सौ बुजुर्ग पर आ रे वह फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंगों में वाखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रो तजा शेह बाके मुग अब्बा पाप दें बनो के अमल फी चितू बा इटालिया उस दाला के बामों ने उस दाला